0: 말해 줘. 뭐지 뭐지 뭐지. 어, 내가 어떻게 하니? 자자자자자자.
1: प्यार से दे रहे हैं रख लो
0: देख देख देख अरे और ये बाप रे बाप स्टाइल तो ब्लास्टिंग मारे लू हो तू चार भी क्या लिखवा ले बुका अरे रे ए ए
1: आ जिगर पलट